0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सबू कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमा हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। नियाव नियू इनाफिया।
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
3: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
2: अलिफ।

तो आप कुछ रात रहे से अपने घर वालों को ले निकलें और खुद उनके पीछे चलें, और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, और जहां आपको हुक्म हो वहां चले जाइए।

तो हुआ कि जो चलने फिरने लगा है, तो गोया कि इब्राहिम अलैहि सलाम जो है, जब वो बेटे के अंदर तमाम खूबियां और बेटे होने से जो उनकी उम्मीदें वाबस्ता थी, तो वो उनको नजर आई खुशियां, वो उम्मीदें नजर आई कि हाँ ये मेरा बेटा मेरी उन उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। तो ऐसे वक्त में बाप की जो है अपने औलाद से, बेटे से मोहब्बत भी इंतहा को पहुंच चुकी है कि बाप जब ये अपनी सारी उसमें चीजें खुशियां उसमें देखते हैं, उसमें उम्मीदें उसके अंदर देखते हैं। तो ऐसे वक्त में जब इब्राहिम खलीलुल्लाह की मोहब्बत अपने बेटे के साथ जो अपनी उरूज पर पहुंची हुई थी, तो अल्लाह ताला ने इम्तिहान लेने के लिए कि इब्राहिम के दिल के अंदर ये बेटे की लखते जिगर की मोहब्बत ज्यादा है या इस मोहब्बत के ऊपर अपने रब की मोहब्बत ज्यादा है, तो इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह पाक ने इशारा दिया इब्राहिम खलीलुल्लाह को। कि तो इशारे से जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये समझे कि अल्लाह पाक मुझे ये बता रहे हैं, मुझसे ये चाह रहे हैं कि मैं अल्लाह को खुश करने के लिए जो है मैं अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला दूं। और इब्राहिम खलीलुल्लाह ने यही काम कर दिया। और फिर अल्लाह पाक की तरफ से जो इससे पहले के इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन कटती, अल्लाह पाक ने कह दिया कि सद्दक्त रुया इब्राहिम, तूने अपने ख्वाब को सच्चा करके दिखाया, ये ख्वाब चाहते थे और तूने ख्वाब को सच्चा करके दिखाया। तो गोया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों को इस्लाम का माना भी समझाया, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा था असलिम, इब्राहिम मुसलमान हो जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अस्सलम तो लिल्लाह रब्बिल आलमीन, फरमाया मैं अब रब्बिल आलमीन के सामने उसके लिए मुसलमान हो गया। तो मुसलमान का मतलब फरमाबरदार होना, फरमाबरदार होना, अल्लाह का फरमाबरदार होना। तो अल्लाह ताला का फरमाबरदार होने का माने है कि सारी जो है अपनी मोहब्बत है और हम सब कुछ अल्लाह को खुश करने के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है अल्लाह की तरफ से उसकी खुशी के लिए, और जो भी हुक्म आ जाए चाहे जितना मुश्किल हो जाए बंदा उसके लिए तैयार हो जाता है कि मेरे रब का हुक्म मैंने कर गुजरना है, चाहे यहां तक कि अगर इतनी बड़ी महबूब चीज की बेटे की कुर्बानी का भी आ जाए। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का माना जो है इस उम्मत को समझाया है कि ये माना इस्लाम का माना। वो कैसा मुसलमान आदमी है कि जो अपनी ख्वाहिशात नफ्स पर जिंदगी गुजार रहा है, जो नफ्स ने कहा उसी पर चढ़ रहा है, फिर भी कहता है कि मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान होने का माना क्या है कि वो चाहता है, कहता है कि मैं फरमाबरदार हूँ। भाई आप तो अपने नफ्स के फरमाबरदार हो। और इसे कुरान में फरमाया कि अरित अरायता मन इत्तखज इलाहु हवाहु अफअंत तकून अलैहि वकील, फरमाया कि आपने उस आदमी को भी देखा है कि जो अपनी ख्वाहिशात नफ्स को ही माबूद बना लेता है, वो अल्लाह का बंदा नहीं बनता, ख्वाहिशात नफ्स का माबूद बन जाता है। फरमाया इन्हुम इल्ला कल अनाम बल उमर दल्लु सबीला, फरमाया कि जो अपनी ख्वाहिशात नफ्स के ताबे चलते हैं वो ख्वाहिशात नफ्स के मुसलमान हो जाते हैं, तो वो गुमराह नहीं बल्कि जानवर से भी ज्यादा गुमराह हो जाते हैं। जो गया कि जानवर जो होता है उससे भी ज्यादा अखस दर्जे में वो चले जाते हैं। तो ख्वाहिशात नफ्स के पीछे ना चलो, मुसलमान को कभी ये जेबा नहीं देता है कि वो मुसलमान कहे अपने आप को और वो अपनी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चलता रहे। तो इस्लाम का यही माना है कि हम फरमाबरदारी करें। और ये ईद उल अदहा हमें यही दर्स देती है कि हम जो है जो अल्लाह पाक ने कहा है उसके लिए हम सर खम तस्लीम करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम चलें, तो तब इस उम्मत के अंदर खैर भी आएगी, हमारे घरों के अंदर भी खैर आएगी और हमारी जिंदगी में भी खैर आएगी, हमारे माल के अंदर भी खैर आएगी। फिर देखना अल्लाह इस्लाम की रहमतें आपके घरों में कैसे दाखिल हो जाती। आज परेशानी इसी वजह से है कि हमने जो नाम के मुसलमान है लेकिन काम सारे वही करते हैं जिससे हमारा नफ्स और शैतान खुश हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला जो है तमाम लोग जिन्होंने जानवरों की कुर्बानियां दी हैं, अल्लाह ताला उनको ख्वाहिशात नफ्स को भी अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। और इस मौके पर जहां हम कुर्बानी करते हैं, ईद करते हैं, हम अपने मजलूम भाइयों को कभी नहीं भूलते हैं। और जो खास करके हमारे पड़ोस में हमारे शहर आ गए मकबूजा कश्मीर, हमारे भाई हैं जिन पर जुल्म सुतम हो रहा है, जो अपनी आजादी के लिए कई दहाइयों से अपनी जंग लड़ रहे हैं, और हमारा मुल्क पाकिस्तान उसने उसका जो है केस अपने हाथ में लिया हुआ है। तो अब ऐसे मौके पर हम अपने उन मजलूम भाइयों के लिए दुआएं भी करते हैं और उनके लिए हर तरीके से कोशिश भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इन मजलूम भाइयों को जालिम के शिकंजे से जो है निजात दिलाए, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। और जो

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: समाइन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मलक सदीक साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून स्कैंडिनेविया के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, काफी अरसा से वो अलील थे। आज उन्होंने मेरे लिए एक पैगाम छोड़ा है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आइए मिलकर मलक साहब का पैगाम सुनते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम जनाब राज साहब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मैं इंशाल्लाह अब तंदुरुस्त हो गया हूँ अल्लाह के फजल करम से, और बहुत जल्द मुलाकात होगी और इंशाल्लाह दोबारा हम नए से रौनक लगाएंगे और अपने मुस्लिम लीग के काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर आपको ईद मुबारक कहता हूँ।
1: समाइन, मलक साहब ने कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन राजा गफूर अफजल को अपना पैगाम सेहत याब होने के बाद पहली दफा मीडिया पर
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। समय ये मिला जुला प्रोग्राम है। समाइन इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सदर मोहतरम रहमतुल्ला बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब, एक बार फिर हम आपको अदारा आपकी आवाज पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी राज साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज है।
1: बेग साहब, आप इतनी बड़ी जमात की, अपोजिशन की जमात के आप सदर हैं, लेकिन आपकी आवाज कमजोर हो जाती है जब आप माइक पे बोलते हैं।
2: यार मैं तो बहुत अच्छी तरह बोलता हूँ और अल्लाह के फजल करम से मेरी आवाज भी ठीक ठाक है, कोई कुछ प्रॉब्लम भी नहीं। पता नहीं ये कोई रेडियो या फोन के सिस्टम में कोई खराबी हो सकती है।
1: बेग साहब चलें, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, ये भी आज कोरोना वायरस का प्रोग्राम है, तो आप कोरोना वायरस के बारे में क्या कहेंगे सामाइन को?
2: इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो जरा बड़ी उम्र के लोग हैं उनको चाहिए कि अपने घरों तक महदूद रहे और अपने बच्चों के जरिए सारी चीजें मंगवाएं बाहर से और एहतियात करें, और डेली जो है ना वो आप नहाए सुबह जो है ना जरूर। हर आदमी जो है डेनमार्क रहने वाला पाकिस्तानी, उसको चाहिए साबुन से अच्छी तरह नहाए और अपने बाल वगैरह सारा बदन साफ करे, और दिन में 2-3 मरतबा खाने से पहले खाने के बाद आप अब साबुन से हाथ धोया करें अच्छी तरह, और ख्याल रखा करें आप कि आपके बच्चे जो है वो भी हाथ धो के खाना खाए। और दूसरा, और जिसको ये तफीफ हो के शक हो के उनको ये सिम्टम है तो उनको चाहिए कि फौरन से पहले वो जो यहाँ के जो दिए हुए नंबर है उन पर फोन करें और टाइम ले, और टाइम लेके अपने आप को चेक करवाए।
1: बेग साहब, अच्छी बात है। बेग साहब, एक तो आपके जो लीडर हैं या आपके स्कैंडिनेविया के चीफ ऑर्गेनाइजर मलिक सदीक साहब, आपको मुबारक हो। आज उनका मैसेज जो है हमने अदारा आपकी आवाज़ पर हमें भेजा था उन्होंने ईद के हवाले से, तो आज मैसेज जो उनकी वॉइस जो है हमने अपने सामान के साथ शेयर की है, आप क्या कहेंगे?
2: जी ये बहुत अच्छा कदम है, अल्लाह ताला उनको तो अच्छी सेहत अता फरमाया, हमें तो बहुत खुशी है। इंशाल्लाह चंद रोज के बाद हम मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर जो है मलिक मोहम्मद सदीक साहब वो सदारत करेंगे इजलास की, और इंशाल्लाह ताला सारे लोग देखेंगे वो सेहतमंद होके दोबारा अपनी जमात के साथ खड़े हैं।
1: बेग साहब, 14 अगस्त बहुत करीब आ चुका है, 14 अगस्त के हवाले से आपका कोई प्रोग्राम है?
2: जी हमारा हर साल 14 अगस्त का प्रोग्राम होता है और इस साल भी है, और इंशाल्लाह ताला आपको इन्फॉर्म किया जाएगा।
1: चले इस वक्त मतलब 14 अगस्त का आपका प्रोग्राम है?
2: जी जी बिल्कुल, हर साल होता है भाई जान।
1: बेग साहब, इस वक्त कोई कम्युनिटी को कोई आप मैसेज देना चाहें?
2: कम्युनिटी के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो आपका रेडियो जो है उनको गाइड कर रहा है, इसमें और भी कोई लोग हैं जो कम्युनिटी में, आप चेयरमैन है कम्युनिटी के, आपसे बेहतर मैसेज कौन दे सकता है आवाम को।
1: चले बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
2: जी राज साहब वेलकम, जब भी चाहे मैं हाजिर हूँ आपकी जो जब भी चाहे।
1: बहुत शुक्रिया बेग साहब। समान ये थे रहमतुल्ला बेग साहब जो के पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर हैं।

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے صبح اعلان کیا تھا کہ آج مختلف ممالک سے ہمارے مہمان ہوں گے، آپ کے اپنے جانے پہچانے کامران جو کہ پاک عمل کلچر سوسائٹی سویڈن مالمو کے صدر ہیں اور نوجوان سیاستدان بھی ہیں، اور ایز اے مجسٹریٹ بھی جو ہے وہ اپنا سویڈن میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سوشل کام بھی وہ اپنا کرتے رہتے ہیں، اور پیشے کے لحاظ سے وہ انجینئر ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ مالمو کی فضاؤں سے موجود ہیں۔ کامران، ایک بار پھر ہم آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: بہت شکریہ آپ کا رہ صاحب، مجھے اپرچونیٹی تھی، بہت مہربانی آپ کی، اور میری طرف سے آپ کے سارے سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔
1: خیر مبارک۔ کامران، سب سے پہلے آج بھی یہ کرونا وائرس کا پروگرام ہے، سب سے پہلے ہم بات کرونا وائرس ہی کریں گے کہ اب کرونا وائرس کا جو ہے وہ کرونے کا کیا حال ہے سویڈن کرونے کا؟
2: آپ کو پتا ہی ہے جیسے کہ سویڈن نے سٹیٹسٹک جو ابھی ریسنٹلی آئی ہے، آپ کو پتا ہی ہے کہ سویڈن نے مطلب لاک ڈاؤن نہیں کیا، تو ابھی جو ہم ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ میں جو تقریباً دو تین دن پہلے ہم پرائم منسٹر سٹیفن لووین کا بھی میسج آیا تھا کہ اس وقت کرونا جو ہے وہ بہت نیچے جا رہا ہے سویڈن میں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس کے لیے انہوں نے مطلب ہے کہا ہے کہ ڈفرینٹ طریقے یعنی ہم نے جو اپنائے تھے اس کو مطلب ہے شکست دینے کے لیے، وہ ہمیں اس کے ریزلٹ آنا شروع ہو گئے، لیکن ابھی بھی یعنی ابھی تک کوئی اس طرح خاص کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم مطلب ہے یہ سمجھیں کہ کرونا وائرس ختم ہو جائے گا، ابھی تک موجود ہے، لیکن آپ مطلب کوشش کریں اور اس کو مطلب ابھی تک سوشل ڈسٹینس کو بھی آپ بالکل اس کو کیپ کنٹینیو رکھیں، اور کوشش کریں کہ مطلب اس سے ہاتھ دھوئیں، اور مطلب اگر کوئی بھی آپ کو سمٹم ہو، کھانسی بخار نزلہ یا کوئی سر میں درد یا کسی قسم کا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، تو کائنڈلی گھر پہ رہیں، اور پھر انہوں نے ڈفرینٹ ایپس بھی بنا دی ہیں اور ٹیلی فون نمبر بھی رکھ دیے ہیں۔ میں آپ کی توسط سے بھی یہ کروں گا کہ 1177 یہ ایک اسپیشل نمبر ہے کہ اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی سچویشن ہو بہت زیادہ آپ کی یعنی زندگی کی جو موت کی، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن بہت ورس ہو گیا، تو 112 کو بھی آپ کائنڈلی نا کال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی یہاں پر 111 جو اور 77 یہ جو نمبر ہے، تو یہاں پر آپ جا کر کائنڈلی مطلب ہے اگر آپ کا ٹیسٹ کروانا ہے COVID-19 کا، تو یہاں پر بھی آپ اپنے فون کر سکتے ہیں، سمٹم کر سکتے ہیں، تو یہاں پر بھی وہ آپ کا مطلب ہے کارآمد ایک جو COVID-19 کا ٹیسٹ آپ بکنگ کر سکتے ہیں یا ٹائم لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دو تین ایپ بھی اب آ گئے ہیں یہاں پر، جیسے ڈاکٹر ایپ ہے اور ہے KRY ایپ ہے، یعنی یہ ایپ ہے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ ڈائریکٹ یعنی آن لائن اپنے ایپ کے تھرو ویڈیو کال اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو ڈاکٹر سے بات چیت کر سکتے ہیں اور وہ مطلب ہے اس سے بالکل مدد لے سکتے ہیں، اور یہ بہت اچھا یہ ہو گیا کہ ہر وقت یعنی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ڈیجیٹل ٹیکنیک جو ہے کمیونیکیشن ہے یہ بہت زیادہ آج کل عام ہو گئی ہے۔ جی
1: کامران، اس کے علاوہ جو آپ سنایا کہ سویڈن میں جو کرونا وائرس کی جو ریشو ہے وہ جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟
2: ہاں جی بالکل، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ریشو مطلب جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے، جو بہت اچھی یعنی ایک کارآمد ہے۔ شروع میں آپ کو پتا ہے کیونکہ اس کی وجہ دو تین اور بھی آئی ہیں، جو میں نے جو تھوڑا سا میڈیا کو سویڈش میڈیا کو فالو کیا وہ دو تین بتا رہے ہیں، ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے، وہ خود مطلب پہلے اتنے لوگوں کو، اور دوسری بات ہے لوگوں کو نالج انفارمیشن بھی نہیں تھی، تو یہ لوگوں کو آنا شروع ہو گئی ہے اور لوگ اس کو سیریس لینا شروع ہو گیا۔ پہلے آپ کو پتا ہے کوئی نئی چیز جب آتی ہے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے، لوگ تھوڑے سے مطلب اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیتے، تو یہ جگہ جگہ آپ کو پتا ہے کہ جب سوشل ہر جگہ لکھا ہوتا ہے ہر، اور یہ بھی قانون بن گیا کہ کوئی بھی یعنی شاپنگ مال ہو، کوئی یعنی پبلک ایریا ہو، تو وہاں پر ہمیشہ آپ کو بورڈ لگنا چاہیے کہ آپ ڈسٹینس کریں، آپ ہاتھ دھوئیں، آپ جدھر بھی آپ جائیں تو کہ بھئی اب انہوں نے نا وہاں پر سینیٹائزر رکھے ہوئے ہیں، ہاتھ دھونے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور آج کل جو میں نے جو ایک ڈفرینٹ بھی سویڈن میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ ابھی یہاں پر اگر آپ پبلک ٹوائلٹس یا پبلک جگہ پر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آج کل وہ سینسر لگے ہوئے ہیں 20 کا، یعنی ہاتھ آپ کو वो टोटी खोलने की जरूरत नहीं होती, हाथ आगे आप करते हैं तो वो पानी आ जाता है। तो डिफरेंट जगहों पे ये चीजें भी बहुत हो गई हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने बसों के अंदर इस वक्त स्पेशली मालमो में, और भी ऐसे ही होगा लेकिन मुझे मालमो का पता है, क्योंकि अब बसों के अंदर भी अब जैसे आप पहले आप टिकट लेते थे तो वो ड्राइविंग ड्राइविंग आपका ड्राइवर आपका टिकट देखता था और फिर आपको आने की इजाजत होती, तो अब आप उस डोर से भी नहीं आ सकते अब, लेकिन अब उन्होंने पीछे लगा दिए तो आप यानी जो पीछे वाला वहां से आप जा सकते हैं उसके अंदर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर भी यानी दो तीन चीजें हैं कि एक चीज ये भी हो गया कि यहाँ की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो वो उस भी थोड़ा सा मसला हो गया कि यहाँ पर वो तकरीबन ओवर 200 जो यानी ड्राइवर हैं वो भी जॉब से जा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी ना अवॉइड करना शुरू कर दिया ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये थोड़ी सी मतलब है एक नुकसान हो रहा है, क्योंकि इतने लोग मतलब है पैसे जनरेट नहीं हो रहे, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो उस बंदे को होगा, आपको पता ही है जिसके पास गाड़ी नहीं है या थोड़ा दूर रहता है, उसने अपनी जॉब पे जाना है या अपना कोई चीजें खरीदने के लिए जाना है या कोई दोस्त के पास जाना है या कोई इस तरह, तो ये चीजें भी यानी थोड़ा सा मसला यहाँ शुरू हो गया। लेकिन अब भी थोड़ी सी यानी हम आपको पता है हम सोशल डेमोक्रेट से मेरा ताल्लुक है, हम हमेशा अगेंस्ट होते हैं कि आप किसी को मतलब है जॉब ना दे। तो एक एक और हमारी पार्टी की तरफ से एक ओपिनियन आई है ये वाली कि आपको बताया कि अभी अगस्त का महीना शुरू हो गया है, अभी 2 अगस्त है आज, तो ये हो गया कि अभी स्कूल शुरू हो जाएंगे, जस्ट कोई 11 को स्कूल शुरू होने हैं या किसी ने अपनी इसके वैसे ऐसा स्कूल शुरू होने, तो ये भी मतलब बातचीत हो रही है कि आप स्कूल को मिसाल के तौर पे उनका जो स्कूल का जो स्टार्टिंग टाइम है ओपन जिस तरह जाना है तो दूसरे स्कूलों से यानी आप थोड़ा डिफरेंस कर लें, ताकि बच्चे मिसाल के तौर पे एक स्कूल अगर 8 बजे शुरू होता है तो ये तो सेकंड जो स्कूल है उसके बच्चे तो आप उसको 8:30 कर दें, यानी बच्चों को भी आप टाइमिंग के थ्रू, जिसकी छुट्टी मिसाल के तौर पे किसी की छुट्टी 3 बजे होनी है किसी की 4 बजे होनी है तो अगले दिन जो दूसरा स्कूल है वो 9 बजे शुरू कर दे, यानी इस किस्म के यानी ये भी एक एक एक किस्म से एक आइडिया दिया है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किसके मतलब आप डिवाइड कर दें डिफरेंट टाइम से, ताकि आपके जो स्टूडेंट्स भी आए वो एकदम बसें ना भरें। अब आपको पता स्कूल में स्टूडेंट्स मतलब है डिफरेंट स्कूल जो आपको बताया उनको उनके पास वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ी चीप होती है, वो गाड़ी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये डिफरेंट यानी आइडियाज हैं यहाँ पर कि भाई किस तरह से हमें मतलब है क्या करना चाहिए कि भाई कि हम नहीं चाहते कि बस जो ड्राइवर हैं उनको भी मतलब है जॉब जॉबलेस ना हो और उनको भी रखा जाए लेकिन काम भी चलता जाए, तो अब इसके बारे में भी काम हो रहा है जी।
1: कामरान आपने बड़ा अच्छा किया तफसील से बताया, तो कामरान अब जो सियासी हालात, क्योंकि आप सियासत से भी आपका तल्लक है, तो सियासी हालात जो है आपकी हुकूमत क्या कुछ कर रही है नई चीजें, या सियासी पार्टियां कोई तब्दीली लाना चाहती हैं या आपकी पार्टी कोई तब्दीली लाना चाहती है?
2: जी बहुत बहुत अच्छा आपका वो ये क्वेश्चन है। पहली बात जो आपको शुरू शुरू में जब आपको बताया कि जब यहाँ COVID-19 आया तो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म स्वीडन को मिला, क्योंकि जो यहाँ की जो आपको बताया डिफरेंट जो अपोजिशन की पार्टीज होती हैं उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया है कि जो वजीर आजम को चला जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। फिर वो कंपेयर करते थे कि डेनमार्क ने लॉकडाउन कर दिया, आपके डेनमार्क ने मतलब है नॉर्वे ने कर दिया, फिनलैंड ने कर दिया, फ्रांस में कर दिया है, यूके में हो गया, इटली में हो गया, स्पेन में, यू गो ऑन, अमेरिका तक में हो गया, जर्मनी में, मतलब ये आप अगर देखें फॉलो करें, लेकिन वो कहते हैं कि देखें यहाँ कम हुआ यहाँ पर, तो लेकिन जो स्वीडन ने एक स्टेटस यानी जो जो कहा मतलब है कि आप देखें कि अगर हम वहां पर अगर बंद हुआ है मतलब है डिफरेंट जगहों पे तो वहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है वहां पर, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी मतलब है इस चीज को हमने लॉकडाउन नहीं करना क्योंकि हमारे पास इतने मतलब है हॉस्पिटल हैं, इतनी हमारे पास जगह, इतनी बेड है हमारे पास, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारी आर्मी यानी डिफरेंट उन्होंने वो भी लगा दिए, खैमे भी यहाँ लगे हैं, टेंट्स भी लगे हैं, तो हम इस चीज को कवर कर सकते हैं, मतलब ये हम मतलब हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कि एक हॉस्पिटल में 50 बंदों के बेड हैं, क्रिटाइन उन्होंने बनाया हुआ है COVID-19 के 50 पेशेंट वो ले सकते हैं, लेकिन वो वहां पर 50 नहीं आ रहे, वहां पर 20 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, तो उनको अगर वो ये देखते कि मिसाल तौर पर 50 का बेड है लेकिन उनके पास 100 आ रहे हैं, 200 आ गए, अगली दफा उनके पास 250 आ गए, फिर तो वो मतलब है उस चीज को लॉकडाउन करें क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है, ओवरफ्लो हो गया, मतलब कोलैप्स हो गया है सिस्टम सारा, फिर तो समझ भी आती है। तो इस वजह से स्वीडन ने मतलब है इस चीजों को भी किया है कि जो मेन जो, और फिर दूसरी बात ये भी है कि अगर मिसाल के तौर पे वो लॉकडाउन करते हैं तो पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के साथ घर में रहेंगे क्योंकि स्कूल भी लॉकडाउन उन्होंने किया, तो इस वजह से उन्होंने जो डे केयर है वो भी लॉकडाउन नहीं किया। तो जो डॉक्टर्स थे, जो नर्स थे, जो पैरामेडिकल के स्टाफ थे, जो मिसाल के तौर पे एम्बुलेंस चलाते हैं, जो टैक्सी वाले लोग थे, जो जो जो मिसाल के तौर पे जो टैक्स ऑफिस में काम करते हैं, जिनकी जिनकी मतलब है ये जो सिस्टम जो था, ये उन्होंने वो जॉब पे आ रहे थे, बकायदा सिस्टम मुल्क एक ना वो चल रहा था, मतलब हर चीज एक अपने सिस्टम में थी और बकायदा काम कर रही थी। तो उन्होंने इस चीज को भी देखा कि भाई ये भी मतलब है तरीके से हम करें, और फिर इन्होंने ये भी कहा कि जो COVID-19 है ये बच्चों पे इतना ज्यादा, क्योंकि उनके जो इम्यून डिफेंस सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो स्टैटिस्टिक और इन्होंने अपने एनालाइज किए कि वो बच्चों पे इतना असरअंदाज नहीं हो रहा है कंपेयर टू जो हमारे सीनियर हैं। तो उन्होंने फिर वो उसकी वो बनाई कैटेगरी बनाई कि जो उन्होंने कह दिया कि जो आपके डे केयर हैं ये अपने आराम से स्कूल में जाएं, और जो आपके नाइन्थ तक हैं वो भी स्कूल में जाएं, लेकिन जो कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज हैं ये थोड़े से यानी डिफरेंस होता है, वो घर में बैठ के ऑनलाइन उनकी क्लासेस होंगी। और फिर उन्होंने कहा जो मिसाल के तौर पे जो थोड़े से सीनियर हैं 60+ हैं, जो 70 हैं, यानी वो घर में रहें, और उनको बकायदा यहाँ तक भी दे दिया है कि वो सैनिटाइजर वगैरह वो बिल्कुल वो ले सकते हैं, फ्री ले सकते हैं, ये भी मसला मतलब है आ गया। तो ये उन्होंने बकायदा एक हर चीज का एक सिस्टम तरीके से लेके गए हैं, और रोजाना आकर आपको बताया कि मिनिस्टर हो गए, और थिग्नेल आपको बता आजकल बड़ा मशहूर है जो स्वीडन का और डॉक्टर है, जो वो आके मतलब है हर रोजाना आके मतलब है हमें वो करता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और बताता था कि आज दिन में क्या हालात है, आज दिन में क्या हालात है। तो सबसे ज्यादा जो हालात जो है वो जो खराब है वो है स्टॉकहोल्म में। तो आज भी आपको मैं जरा मतलब आपको बताता जाऊं कि नॉर्वे में कि बंदे अगर मिसाल के तौर पे आप तो ये इसमें समर आ गया, तो नॉर्वे ने भी अभी तक स्वीडन को फुल मतलब है आप लोगों को नहीं, वो नॉर्वे ने भी स्वीडन वालों में कहा है कि सिर्फ स्कोने के लोग, यानी जो मालमो हो गया, लुंड, हेल्सिंबोरी, ये जो स्कोने के लोग हैं ये सिर्फ नॉर्वे जा सकते हैं, बाकी आपने इसी तरह स्वीडन डेनमार्क ने भी ऐसे ही किया कि स्टॉकहोल्म के लोग ना आए हमारी तरफ, नॉर्थ स्वीडन के लोग ना आए, यानी वो आए सिर्फ स्कोने के भी कुछ ले आ सकते हैं। फिर वो आ गया था कि एड्रेस कैसे पता लगेगा कि स्कोने में है या ये रहता है बंदा या ये स्टॉकहोल्म में रहता है या मालमो में रहता है, तो उन्होंने कहा कि टैक्स ऑफिस एक वो लेके आए, कागज लेके आए। लेकिन मुझे वैसे ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि अभी डेनमार्क ने भी खोल दिया लेकिन अभी तक भी कंडीशंस हैं कुछ, ये भी मुझे है इन्फॉर्मेशन जी।
1: तो कोई मालमो में कोई डेमोस्ट्रेशन भी हो रही है यहाँ जो है डेमोस्ट्रेशन कश्मीर के हवाले से, कोई मालमो में भी डेमोस्ट्रेशन हो रही है?
2: नहीं जी, हम इतने तो नहीं है, लेकिन ना मुझे बिल्कुल हमें ये बात पता है कि 15 अगस्त को हमारे जनाब राजा साजिद साहब है जो माशाल्लाह बहुत एक्टिव है और कश्मीरियों के लिए हमेशा उनके हक में बात करते हैं, और माशाल्लाह बड़े मैंने उनको मतलब है वो हमेशा, और वो उनकी बहुत अच्छी एक चीज मैंने उनको देखा कि वो हमें भी साथ मिलाते हैं, मतलब है वो हमें मालमो वालों को स्पेशली जो पाकिस्तानी है उनको भी कहते हैं कि आप भी आए, और मैंने लास्ट टाइम भी देखा था कि इंडियन एम्बेसी के सामने 15 अगस्त को जब उनकी एक इंडिपेंडेंस डे होती है और वो वहां पर जाके उनके सामने एक स्पीच करना, लोगों को जमा करना, एक इनिशिएटिव बनाना और बकायदा वहां पर मतलब है एक प्रोटेस्ट करना, और ये और वो आपको पता है मीडिया में आता है, वहाँ डेनिश मीडिया आपकी इसको वो कवर करती है, न्यूज आते हैं, पाकिस्तानी मीडिया आती है, और स्पेशली जो हमारे यूथ हैं यहाँ पर जो डैनिश पाकिस्तानी है, स्वीडिश पाकिस्तानी है, जो बच्चे हैं उनको भी वो होता है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि क्या चल रहा है। ये चीज उनके वो यानी जबरदस्त मैं उनको खराज तहसीन पेश करूंगा जनाब राजा राजा साजिद साहब को, कि उनकी यानी बहुत बड़ी एफर्ट है ये वाली। और मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर का इशू अब ह्यूमैनिटी का इशू हो गया है, ये अभी कोई इसमें ये नहीं हो, ये दुनिया की सबसे बड़ी जेल है। अगर आप कंपेयर करें ना इस इशू को फलस्तीन के इशू से, तो ये कश्मीर का इशू फलस्तीन इशू से बहुत बड़ा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा बस आ जाता है कि फलस्तीन में मस्जिद अक्सा है, वहां रिलीजन का वो है हमारे लिए, बिल्कुल वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा इशू, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कश्मीर में आप देखें एक ज्यादा फलस्तीनी इतने नहीं है, तकरीबन 9 मिलियन लोग हैं जी, वो वहां पर उन्होंने डबल लॉकडाउन किया हुआ है। एक तो लॉकडाउन उन्होंने 5 अगस्त को किया था 2019 में, और दूसरा लॉकडाउन ये कोविड-19 की वजह से उनको वो मिल गया। और रोजाना हम टीवी पे देखते हैं कि कितने जो बेचारे हमारे नौजवान हैं, कभी कोई टीचर वहां से उठता है फ्रीडम फाइटर, कोई बेचारा कोई वहां पर कोई कोई यानी स्टूडेंट्स उठता है, कोई मतलब है ये यूथ उठ रही है वहां पर। और वो क्या करते हैं, वो बेचारों उनको शहीद भी कर देते हैं और फिर उनकी लाश उन्हें वापस भी नहीं करते। मैं रिसेंटली जब एक बहुत बड़ी एक पिक्चर कश्मीर से आई थी, जब इस बेचारे के नाना को शहीद किया गया, और वो उस बच्चे को तो समझ नहीं है कि उसे गोली लगी, उसके पेट पे वो बेचारा बैठ जाता है, क्योंकि वो बच्चा अपने आप को महसूस यही करता है कि नाना के साथ मैं रहूं, और वो तस्वीर उतरती है। और फिर बाद में एक और हमने सोशल मीडिया पे देखी कि इंडिया वाले फौज उसकी उसके पेट पे पैर रखकर और वो बात कर, कितनी बड़ी एक इंसानियत है। मैं कहता हूँ यहाँ पर किसी आप जानवर को इस तरह मतलब है बाहर निकल के आप उसको इस तरह करें जगह पर, मैं कितने लोग खड़े हो जाएंगे, वो तो फिर भी इंसान है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो 15 अगस्त में इंशाल्लाह हम भी यहाँ से बहुत से मतलब है शुरू करेंगे और कर भी रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं 15 अगस्त को, और मेरी ये रिक्वेस्ट भी होगी इंशाल्लाह कि जितने भी पाकिस्तानी स्पेशली, और साथ अपने लोकल भी लाएं, यानी अगर डैनिश है वो भी साथ लाएं, और अगर स्वीडिश है या कोई भी हो यानी वो भी साथ लाएं और डिमोन्स्ट्रेशन करें। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है 15 अगस्त 9:30 बजे इंडियन एम्बेसी के सामने कोपनहेगन के अंदर, तो वहां पर बिल्कुल भरपूर तरीके से अपनी वो कराएं। और जो है राजा साजिद साहब उनका माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और हमारे बिल्कुल मालमो पाकिस्तानी हम उनके बिल्कुल भरपूर उनके साथ हैं जी।
1: कमरान आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, इंशाल्लाह आपसे राबता रहेगा
2: इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया राजा साहब, बहुत शुक्रिया।
1: समान ये थे कामरान कुरैशी जो के मालमो स्वीडन की फ़जाओं से बात कर रहे थे। ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, बड़े काबिल हैं, ये ऑनरेडी मजिस्ट्रेट भी हैं जो कोर्ट में बैठते भी हैं बाकायदगी से जो है। इसके अलावा अपना पेशे के लिहाज से वो इंजीनियर हैं, गैस में काम करते हैं, बड़ा अच्छा है इनका सोशल वर्क भी, बड़ी हिम्मत है इनकी कि इतना टाइम ये निकालते हैं अपनी कम्यूनिटी के लिए, सोशल कामों के लिए। तो यही जज्बा होना चाहिए कि अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, जिस मुल्क में रहते हैं उसके लिए भी, और बाकी भी जो है अपने काम करने चाहिए। समझने हमारे साथ साथ रही, अगले मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: सामने इस वक्त चौधरी शौकत साहब जो के काफ लीग के सदर हैं इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। चौधरी साहब खुश आमदीद।
2: जी बहुत मेहरबानी रहने साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक।
1: खैर मुबारक चौधरी साहब, पहले सबसे पहले तो आप अपनी तबीयत के बारे में बताएं।
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है कि मैं तो अब इंशाल्लाह जो है ना पूरी तरह सेहत याब हो गया हूँ। आपको पता ही है, आपके साथ भी था 2-3 दिन पहले, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने सेहत दी है, दोस्तों की बहन भाइयों की दुआओं से तो अल्लाह पाक का बहुत करम है।
1: चौधरी साहब आप कोरोना वायरस के हवाले से कोई अपना, जिन लोगों ने इस तरह के इस प्रोसेस से गुजरे हैं, जिनका ऑपरेशन हुआ है, उनको कोई मैसेज देना चाहें आप?
2: हाँ बिल्कुल, ये है कि सबसे पहले एहतियात सबसे बहुत जरूरी है। आप अपना फासला पब्लिक गैदरिंग में बहुत ज्यादा ना जाया करें, कम जाया करें, और जाए भी तो अपना मास्क वगैरह ये इस्तेमाल करें और जो है अपना फासला रखें। हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस्लाम तो वैसे मुंह से भी हो जाता है, तो आपको पता है कि ज्यादा कोई पता नहीं होता कि इस भाई को कुछ ये कोई जो है ना क्या कहते हैं कि बीमारी लाग है या नहीं है या जो हो सकती है, तो आप अपनी एहतियात बहुत जरूरी है। जो खासकर बुजुर्ग लोग जो है जिनको ये शक है या कमजोर है या हो सकता है या हो सकती है, या जिनको जैसे मुझे मेरी तरह ऑपरेशन जिन्होंने करवाया है, तो एहतियात करें। सबसे बहुत जरूरी है कि एहतियात, अपनी सेहत का ख्याल रखें, फासला रखें और मिलना जुलना बहुत कम रखें।
1: ये बड़ी अच्छी बात की जो सब, चूंकि आप सियासतदान भी हैं तो एक आध बात सियासत पर भी कर लेते हैं। जो सब आप एक अपोजिशन जमात में पहले थे, उसके बाद आप हुकूमत में गए और अब फिर आप अपोजिशन की बातें कर रहे हैं, क्या बात है? ये हुकूमत तब्दील तो नहीं होने जा रही?
2: राय साहब जहाँ तक मेरी पार्टी का तल्लक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके साथ हैं। जैसे कि हमारे लीडरान ने भी हमेशा कहा है कि हम इनका पूरा साथ देंगे, 5 साल पूरे करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो कि काम कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में होते हैं, तो वो उनकी निशानदेही करना फर्ज बनता है उस पार्टी का, जो उन पे फर्ज भी हो जाता है कि वो हुकूमत को बावर करवाएं कि ये मामला जो है ना गलत सिमत में जा रहे हैं, इसको इस तरीके से आप जो है ना लेके जाएं। तो ये कुछ कुछ कुछ लोग होते हैं, कुछ अनासर होते हैं जो कि इसका तजिया किसी और तरीके से करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी पार्टी उनके साथ है, गवर्नमेंट के साथ है इंशाल्लाह। अभी तक वो जो है ना हम उनके इत्तेहादी हैं और उनका ही साथ देंगे। तो खुद कैसी गलतियां होती हैं, ऐसी जो कोई पॉलिसियां होती है जिनको जिनकी निशानदेही करनी बहुत जरूरी हो जाता है कि पार्टी के लिए भी, जैसे बेशक वो इत्तेहादी हो जो भी हो, तो उनका बनता है कि जैसे मजहब के इस्लाम के लिहाज से काफी चीजें जो है ना चौधरी परवेज लाई साहब ने निशानदेही की जो है ना वो उनको उजागर किया, तो ये फर्ज बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको कहें कि ये मामला जो है ना इस तरीके से जा रहे हैं जो कि कम्युनिटी के मसाइल हैं, जो कि पाकिस्तानी अवाम के मसाइल हैं, हम उनके ऊपर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए, हमें उनको हल करना है, पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देनी चाहिए, तो ये तो हमारा फर्ज बनता है और इंशाल्लाह हम उनके साथ ही हैं और साथ उनका देंगे।
1: लेकिन आप एक तरफ साथ भी हैं तो दूसरी तरफ आप पर जो आपकी हुकूमत चौधरी बरादरान पर जो नायब के जो 20-25 साल पुराने मुकदमा थे दोबारा खुलने जा रहे हैं, तो आप खाली सियासी बयान होता है कि हम हुकूमत के साथ हैं, वैसे आप साथ नहीं है हुकूमत के?
2: नैब के केस जो राज साहब आपको पता है ये तो अभी तो नहीं है, ये तो पहले के है ना, तो पहले को कितनी दफा हमें क्लियर किया, हमारी पार्टी को नैब ने क्लियर किया, क्लियर चिट भी दे दी साफ, उनका कोई एलिगेशन भी नहीं लगाई है, कुछ भी नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर दोबारा ये हो गए, तो ये तो नैब को चाहिए कि अगर जब कुछ केस क्लियर हो जाते हैं तो उनको दोबारा फिर वो अंडर प्रेशर पार्टी को लाना, लोगों को लाना, तो ये तो कोई नामनासिब बात है ना। तो जो अगर नैब के केस है तो इंशाल्लाह हम उनकी फाइट करेंगे, पहले भी हम फाइट की थी, हम इंशाल्लाह हम अब भी फाइट करेंगे, हम अपने मसाइल जो है ना उनको हम जो हमारे केस है वो बिल्कुल इंशाल्लाह हम साफ है, क्लियर है हमारे केस, इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। तो चौधरी बरादरान ने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है, दारों का एहतराम किया है, तो इसी तरह इंशाल्लाह हम आगे भी करेंगे।
1: लेकिन जो सब बंदा हुकूमत में होता है तो फिर हुकूमत में ही रहना चाहिए, या कितने पाकिस्तान में इतनी ज्यादा डेमोक्रेसी हो गया कि हुकूमत के रहते हुए अंदर भी तनकीद कर सकता है बंदा?
2: बिल्कुल राय साहब, ये तो हक इंसान का ना, पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां है उनका ये हक बनता है, चाहे वो आतंकी हो, चाहे वो अपोजिशन हो, जो भी हो, तो जो भी कोई गलत समझती है पार्टी के ये गलत है तो उसकी निशानदेही करना पार्टी का फर्ज बन जाता है, जो कि वो अपने नजरिए के मुताबिक अपनी सोच के मुताबिक समझती है कि ये जो मामलात है ये हमारे नजरिए के मुताबिक गलत है, तो चाहे गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो तो उसके निशानदेही करना फर्ज बनता है। तो वो हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह परवेज भाई साहब हमेशा अच्छे तरीके से, जो शुजात साहब अच्छे तरीके से वो जो है ना उजागर करते हैं उन मसलों को, उन मसाइल को।
1: जो साहब क्या ये बात मुस्लिम लीग नवाज की और मुस्लिम लीग काफ की ये एक ही अंदर जम होने जा रही है आपकी जमात, और ये मुआहदा हो चुका है कि वजीर आला जो पंजाब होंगे अगर केयर टेकर हुकूमत बनती है तो वजीर आला या तब्दीली आना उस तब्दीली होती है बुजदार साहब जाते हैं तो चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो वजीर आला पंजाब होंगे, आपको कोई अंदर की खबर दें आज?
2: राज साहब जहाँ तक अंदर की बात है वो तो मैं गायब का इलम तो नहीं जानता, लेकिन ये है कि आपको पता ही है कि इतना काबिल परवेज लाई साहब जो इतने काबिल इंसान है उन्होंने अपना वर्क पंजाब में करके दिखाया था अवाम को रिलीफ दी थी, पाकिस्तानी अवाम को जो उनके मसाइल असल मसाइल थे उनको उन्होंने उन पे काम किया था, तो उनका नाम आज तक परवेज लाई साहब का पंजाब में ये नाम आता है कि उनका रिकॉर्ड जो है ना हिस्ट्री में है। तो ये चौधरी परवेज लाई साहब को तो सब ही एतमाद करते हैं, तो लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अभी उनके साथ कुछ मेरे इलम के मुताबिक तो कोई ऐसा अभी को लाए जो है ना एग्रीमेंट नहीं हुआ ना एक मुआहदा हुआ है ना कोई ऐसी बात हुई है, तो अगर नून वाले चौधरी परवेज लाई साहब पे आप इत्माद करते हैं तो वो समझते हैं कि परवेज लाई साहब उनमें ऐसी काबिलियत है इसके काबिल है, तो हम उनका शुक्रगुजार हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो समझते हैं। तो वक्त आने वाला वक्त तो वो उसी वक्त बात कर सकता है जब वो आएगा, फिर देखेंगे क्या होगा, अभी तो गवर्नमेंट के साथ हम तादी हैं।
1: तो सब एक हमारा यहाँ अकलौता मेंबर है पार्लियामेंट का मलिक सिकंदर सिद्दीक, और उसके बाद जो है जो हमें खबरें मिल रही हैं डेफिनेट आपके पास भी खबरें होंगी कि अगली दफा बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो अब कम्यून की तरफ लोग लगता है कि ज्यादा तोजो नहीं दे रहे, पार्लियामेंट के कैंडिडेट बनने की तरफ ज्यादा तोजो दे रहे हैं, आप क्या सियासी तजिया आपका क्या है?
2: राज साहब आपने कहा कि ये ज्यादा पार्लियामेंट की तरफ लोग ध्यान दे रहे हैं, असल में तो हमारे मसाइल पड़े हुए हैं कम्यून लेवल पे, हमारे बच्चों के हमारे जो मामलात है वो उधर से ही जो है ना हमने उनको हल कर

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यदिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, दुरूस साबका में सीरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब में हमने कुछ बातें अर्ज की। कुछ जिक्र तो था जजीरा अरब के बारे में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस जजीरा अरब का क्या हाल था, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर की बेसत के साथ इसका कुरान में भी खास तौर पे जिक्र किया है कि वह इन कानून मिन कब्ल लफी दलाल मुबीन, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले ये लोग खुली गुमराही में पड़े। तो उसके बारे में हमने कुछ बातें अर्ज की और फिर उसके बाद वो मुबशरात और वो मुअश्शरात, मुअश्शरात का माना यानी वो इशारात, मुबशरात का माना होता है किसी चीज के बारे में खुशखबरियां। तो ये मैंने सीरत के पहलू से पहले अर्ज किया था कि ये सारी चीजें ऐसे नहीं है कि खुद ब खुद एक इत्तेफाक है, बल्कि ये बिल्कुल अगर आदमी बड़े तअम्मुल से, गौर से, फिक्र से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हर पहलू पे नजर डाले तो समझ आता है कि खालिक कायनात ने ये सारा इंतजाम, ये सारी बिसात जो है ये इसीलिए बिछाई गई। ये ऐसा नहीं कि इत्तेफाक ऐसा हो जाए, यानी आप किसी भी पहलू पे नजर डालें। यही मैंने अर्ज किया था कि उस वक्त दुनिया में दो सुपर पावर्स थी, एक रूम और एक फारस, लेकिन ये सरजमीन हिजाज एक जमीन थी जिस पे दोनों सुपर पावर का कंट्रोल नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला का इस खित्ते को मुंतखब करना हुजूर की विलादत के लिए, तो इसमें आखिर कोई बात तो ऐसी थी कि दो ताकतें एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, एक मावरा नहर तुर्कमेनिस्तान की तरफ और एक अल्बानिया से लेकर हबशा से लेकर यहां तक ये दोनों ताकतें बाहर से घिरे हुए हैं, लेकिन ये दरमियानी टुकड़ा किसी के तसल्लुत पे नहीं। और अल्लाह पाक ने इसी जगह अपने उस आखिरी नबी खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, क्योंकि ये तो फिर आपके अपने तदब्बुर पे होता है। अब देखें ना जी, जैसे आजकल सुना आपने और पढ़ा आपने अखबारों में भी, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का एटमी धमाके करना, ये करना, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। तो इस पर एक जो साइंसदान है वो अपनी नजर डालेगा, जो सियासी लोग हैं वो अपनी नजर से सोचेंगे, जो इक्तसादी लोग हैं वो अपनी नजर से सोचेंगे कि इसमें कितना फायदा कितना नुकसान, वो जरब तकसीम लगाएंगे, और आमतुल नास जो हैं वो अपने फिक्र से सोचेंगे, और एक कुरान और सुन्नत का तालिबुल इल्म जो है उसे अपने फिक्र नजर की रोशनी में सोचना पड़ता है कि ये भी कोई ऐसी चीज तो जरूर है कि जिस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल है उसी साल में हाथियों के बादशाह ने हमला किया जो आप पढ़ चुके, और हाथियों के हमले को खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों को भेजा, बाबील को, बड़ा मारूफ किस्सा है, और तीन पत्थर लेके आए और गिराए गए और वो खत्म कर दिए गए हाथी। तो ये वो तीन पत्थर क्या थे जिनको अल्लाह ने खसूसी तौर पे कुरान में जिक्र किया, वरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारत मिन सिज्जीदिन, कि हमने वो तीन परंदे भेजे कि अबाबील और ताकि वो उनपे पत्थर जो सिज्जील एक खास जहन्नम की आग में पकाए गए, आम पत्थर नहीं थे कि पहाड़ के उठा लो। तो इसी से वो आइटम के जर्रे पे आप गौर करें कि दुनिया उस जर्रे पे पहुंची कि एक जर्रे से भी इतनी बड़ी चीजें जो है वो तिबा की जा सकती है। तो असल चीज तो ये इस्लाम ने पेश की थी, कुरान ने पेश की थी, फिर अपनी अपनी सोच से लोग वहां पहुंचे कि ये एटम का जर्रा क्या है। अच्छा, इस एटम के जर्रे का उस साल पैदा होना जिस साल नबी पैदा हुआ हो क्या वजह है आखिर, इस पर आप गौर करें। अल्लाह ने आप इल्म दिया है, पढ़े लिखे लोग हैं, कि आखिर उसी साल ये अल्लाह बाग ने क्यों एटम का जर्रा पैदा किया। उससे पहले मुख्तलिफ कौमों पर अदाब आ चुके हैं, किसी को सयाह से मारा गया, किसी को बिजली की कड़क से मारा गया, किसी को पानी में डबोया गया, किसी की बस्तियों को उलट के फेंक दिया गया, कहीं हवा भेजी गई, लेकिन ये तक अजाब किसी पे नहीं भेजा गया कि ऊपर से एक छोटा सा परंदा उड़ता हुआ आए और एक छोटी सी कंकर डाल दे। और वो अगर ऐसे आगे हालत ऐसी पैदा कर दे कि फजालहुम का असफिम्मा अकूल, ऐसे कि जैसे कोई घास खा खा के चबा चबा के जानवर फेंक देता है ना, इतनी बड़ी चीजें उस तरह हो जाए। अच्छा, इसी तरह आप दूसरी बात पे गौर करें कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का जमाना आया तो आसमानों पे पहरे शदीद हो गए। जिन्नात से काहिन कहें भी खबर ले आओ, खबरें ले आओ ताकि हम अपनी कौम को खबरें दें। वो कहें कैसे खबरें ले आए?

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब जब हजर अस्वद का वक्त आया, अब सब कौम लड़ने मरने पे आ गए। हजूर पाक की जात थी जिन्होंने चादर बिछाई और कहा कुरैशियों से कि मत लड़ो, तुम हर आदमी को ने पकड़ ले और उठा के ले चलो। जब काबा के करीब आए, हजूर ने फरमाया तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब काबतुल्लाह में ये पत्थर जो है मैं अपने हाथ से लगाऊंगा। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हजर अस्वद को अपने हाथ से काबतुल्लाह में रखा। ये इत्तेफाक की बात है कि बाद में करामता ने ये यानी हजर अस्वद जो है, करामता एक बहुत बड़ा बेदीन फिरका गुजरा है, उन्होंने एक दफा अपना काबा बनाया था बहरीन में और वो अपने काबे के लिए यहां से हजर अस्वद तोड़ के ले गए। बाज तारीखों में है कि 20 साल और बाज तारीखों में है कि 70 साल का अरसा जो है ये फिर करामता के पास रहा। अच्छा, और खुदा की शान देखो कि जैसे आज यानी 1419 में 14 सदी के बाद, क्योंकि मैं 20वीं सदी का जरा कायल कम हूं, वैसे आजकल तो बड़ा प्रोपेगंडा होता है ना, 20वीं सदी में दाखिल हो रहे हैं, 20वीं सदी में दाखिल हो रहे हैं, पता नहीं यानी मुसलमान होके काफिर बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आई आज तक 20वीं सदी कहां से आ गई। ओ भाई, 20वीं सदी तो ईसाइयों की है, उसका मुसलमानों से क्या ताल्लुक? ये 1999 1998 ये क्या है, ये तो सने मिलाद है, इसका ताल्लुक तो ईसाइयों से है, मुसलमानों के साथ क्या ताल्लुक है 20वीं सदी का? लेकिन अफसोस से हर मुसलमान अखबारें पढ़े, जनाब 20वीं सदी में हम दाखिल हो रहे हैं और 20वीं सदी में हम यूं दाखिल होंगे और 20वीं सदी में हम यूं दाखिल होंगे। खुदा के बंदे, कौन सा पहाड़ मार रहे हो? 20वीं सदी में तुम दाखिल हो रहे हो, पता नहीं अल्लाह पहले मार दे, तुम कैसे दाखिल हो रहे हो? इतनी बड़ी जिहालत की बातें करते हैं, ये नहीं सोचते कि दुश्मन का प्रोपेगंडा है कि इस्लाम की हिजरी तारीख हमारे दिमागों से निकल जाए, इतना प्रोपेगंडा कर दिया जाए कि इस्लाम की अजमत का जो निशान है तारीख हिजरत वो हमारे दिमागों से सर्फ हो जाए। कभी आपने सोचा है? आप कहते हैं जी के यानी अच्छे खासे पढ़े लिखे दोस्तों में, चौबी कभी हमारा दर्स हो, कहते नहीं मंडे शाम को। भाई मंडे तो ये मून डे को कहते हैं, चांद चांद देवता, संडे सूरज देवता, ये तो काफरों के नाम है। आपने पता नहीं कहां से याद किए हुए, ये सब काफरों के नाम है। वेडनेसडे, संडे, मंडे, ट्यूजडे, ये सारे जो है ये तो काफरों के नाम है, जो सूरज के पुजारी और तारों के पुजारी उनके नाम। इनका इस्लाम से क्या ताल्लुक? इस्लाम सीधी बात करता है, आहद इतने तलातार बस 1 2 3 4। या वो नाम लेता है जिसका नाम कुरान ने लिया है, दानू दिया सदात में योमिल जो बात फंसा हुए राजा बदरुल भाई तो बहरहाल, और शब्द का नाम लेता है तो कुरान ने नाम लिया। अब जनाब बहरहाल कहने का मकसद ये था कि ये शर्फ जो है ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब हुआ कि उन्होंने हजर अस्वद जो है, अब देखें ना ये अल्लाह की कुदरत है, समझ नहीं आती यानी सीरत के किस किस पहलू को आप देखें। हजर अस्वद, अच्छा अजमगम पे नजर डालें, सैयदना इस्माइल के पांव लगे, जिब्रील ने पर मारा, लेकिन हजूर ने जब जमजम पिया तो अपना लुआब मुबारक जमजम में डाल के फिर वो कुएं में डाल दिया ताकि कयामत तक उम्मत को एक नबी के पांव, एक नबी नूरी नबी हजरत जिब्रील का पर और मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब की बरकत नसीब होती है। इसी तरह हजर अस्वद को देखें कि उतरा आदम के साथ, रखा इब्राहिम ने, फिर जोड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही व असाबी वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा ने। बिरादरान इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह दुरूस साबका में जो सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्न में हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जज़ीरे अरब के अहवाल, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल आपके बारे में मुबश्शरात, इशारात, इरहासात, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा करामत, बा सआदत, बा बरकत, बा रहमत, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माने रज़ात, और ज़माने रज़ात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वापस मक्का में तशरीफ लाना, अब्दुल मुत्तलिब की किफालत, अब्दुल मुत्तलिब की उसके बाद मौत, और پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابی طالب کی کفالت میں منتقل ہونا، اور اسی کفالت کے دوران میں قریش مکہ کا تجدید کعبہ کا پروگرام، اللہ کے کعبے کی تعمیر، اور اس تعمیر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاتھوں مبارک سے حجر اسود کی تنصیب، یہ تمام مراحل تقریباً. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، آپ کا سفر تجارت امبال خدیجہ سے اور میسرہ غلام کی